ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 22 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वायला कवानो से सुने समाचार। जापान भीषण गर्मी की चपेट में है। उच्च दाब तंत्र के कारण तापमान लगातार दूसरे दिन भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। मिए प्रीफेक्चर के कुवाना शहर में बुधवार को दोपहर 2:20 पर तापमान बढ़कर 40.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। शिजुओका प्रीफेक्चर के हामामात्सु शहर में दोपहर 1:50 पर 40.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और गिफू प्रीफेक्चर के ताजिमी शहर में दोपहर 2:20 पर 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कई अन्य शहरों में भी तापमान 39 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया कि सोमवार को कांतो, कोशिन और तोकाई क्षेत्रों में बारिश का मौसम समाप्त हो गया है। टोक्यो के दमकल विभाग का कहना है कि मंगलवार को तापघात के संदेह में 287 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। मौसम विज्ञान एजेंसी ने 41 प्रीफेक्चरों में तापघात की चेतावनी जारी की है। लोगों को तापघात से बचने के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग करने और पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही लोगों से लंबे समय तक बाहरी गतिविधियों से बचने का आग्रह किया जा रहा है। एक सुरक्षा कंपनी के अनुसार 13 जुलाई को जापान की प्रमुख फ्रोजन फूड कंपनी निचेरई पर हुए साइबर हमले की जिम्मेदारी रैंसम हाउस नामक हैकर गुट ने ली है। साइबर हमले के कारण 13 जुलाई से कंपनी का सिस्टम ठप पड़ गया, जिससे कोल्ड स्टोरेज संचालन और फ्रोजन फूड की आपूर्ति बाधित हो गई। सुरक्षा कंपनी SNJ ने कहा कि रैंसम हाउस हैकर गुट ने मंगलवार को एक डार्क वेबसाइट पर बयान पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया है कि उसने निचेरई कंपनी का कुछ आंतरिक डाटा चुरा लिया है। यह गुट रैंसमवेयर हमलों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। पिछले साल अक्टूबर में इसने कथित तौर पर जापानी ऑनलाइन रिटेलर असुकुरु पर साइबर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिससे कंपनी के सिस्टम में व्यवधान पैदा हो गया था। जापान में कई कंपनियां रैंसमवेयर हमलों का शिकार हो चुकी हैं और इन हमलों के दौरान हैकर्स फिरौती मांगने से पहले कंप्यूटर और सर्वर डाटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं। उक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बाद सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सिरस्की को बर्खास्त कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मिखाइलो द्राप्ती सिरस्की की जगह लेंगे। ये विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए जब ज़ेलेंस्की ने इस महीने की शुरुआत में रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को प्रभावी रूप से बर्खास्त कर दिया था। फेदोरोव ने सैन्य सुधारों को बढ़ावा दिया था और जनता का समर्थन हासिल किया था। खबरों के अनुसार उनके सिरस्की से मतभेद थे, जो कुछ सुधारों का विरोध कर रहे थे। फेदोरोव को पद से हटाए जाने के खिलाफ जनता का आक्रोश जारी रहा। प्रदर्शनकारी उनकी बहाली और सिरस्की को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के धुर दक्षिणी द्वीप के पास स्थित उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड में एक चीनी नौसैनिक पोत द्वारा किए गए गोलीबारी अभ्यास को लेकर जापान की चिंताओं को चीन ने खारिज कर दिया है। जापान सरकार ने पुष्टि की है कि रविवार को प्रशांत महासागर में ओकिनोतोरी शिमा द्वीप से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जापान के ईईजेड के भीतर चीन के मिसाइल विध्वंसक पोत ने मशीन गन से प्रशिक्षण किया। जापान ने राजनयिक माध्यमों से चीन को अपनी चिंताओं से अवगत कराया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में जापान की आपत्तियों को निराधार बताया। ओकिनोतोरी शिमा का उल्लेख करते हुए उन्होंने चीन के पूर्व तर्क को दोहराया कि ये एक चट्टान है, द्वीप नहीं, और इसलिए इसे ईईजेड या महाद्वीपीय शेल्फ का अधिकार नहीं है। प्रवक्ता ने तर्क दिया कि खुले समुद्र में चीन की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जापान अन्य देशों के वैध और कानूनी अभियानों को बदनाम कर रहा है और बाहरी खतरे का डर पैदा कर रहा है। उन्होंने जापान पर अपने सैन्यीकरण को तेज करने और युद्ध पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देने का बहाना खोजने का आरोप लगाया। जापान सरकार का कहना है कि वो इस क्षेत्र में अपनी निगरानी और सर्वेक्षण अभियान जारी रखेगी। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। सितंबर में लागू हो जाने के बाद ये यूरोप में इस तरह का पहला उपाय होगा। फ्रांस की संसद के दोनों सदनों, सीनेट और नेशनल असेंबली ने मंगलवार को इस विधेयक को मंजूरी दी। सितंबर में नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के साथ ही 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मौजूदा अकाउंट बंद करने के लिए जनवरी तक 4 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म्स को फ्रांसीसी गोपनीयता नियामक द्वारा अनुमोदित आयु सत्यापन का भी उपयोग करना होगा। उम्र के आधार पर प्रतिबंध लगाने के कदम बच्चों पर सोशल मीडिया के संभावित नकारात्मक प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंता दर्शाते हैं। ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। यूरोपीय संघ भी नियमों पर विचार कर रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा है कि गर्मियों के बाद इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। जापान की प्राचीन राजधानी नारा में पर्यटक एक संगीत वाद्य फ्रेंच हॉर्न बजाकर वन्य हिरणों को बुलाने का आयोजन देखकर आनंदित हो गए हैं। एक सदी पुराने इस कार्यक्रम को शिकायोसे कहा जाता है और ये वसंत, ग्रीष्म और शीत ऋतु में सीमित समय के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम 19 जुलाई से शुरू हुआ। हिरण संरक्षण समूह के एक सदस्य ने वाद्य पर जब बेथोवेन की पास्टोरल सिम्फनी बजाई तो खासुगा ताइशा श्राइन के परिसर में एक खुले मैदान में लगभग 100 हिरण दौड़कर आ गए। समूह के सदस्यों ने हिरणों को बलूत के फल खिलाए और हिरण उन्हें खाने की होड़ में जुट गए। गर्मी के मौसम में हिरणों को पुकारने का कार्यक्रम 6 सितंबर को छोड़कर 27 सितंबर तक हर रविवार को आयोजित किया जाएगा।
2: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान भीषण गर्मी की चपेट में है। उच्च दाब तंत्र के कारण तापमान लगातार दूसरे दिन भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। एक सुरक्षा कंपनी के अनुसार 13 जुलाई को जापान की प्रमुख फ्रोजन फूड कंपनी निचिरे पर हुए साइबर हमले की जिम्मेदारी रैंसम हाउस नामक हैकर गुट ने ली है। और फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया। और इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 21वें पाठ में आप कहाँ हैं ये बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो घूमने आई है। आज दोनों काइतो से लोकप्रिय पर्यटन स्थल सापोरो घंटा घर में मिलने वाली हैं।
0: दोनों घंटा घर के अंदर काइतो का इंतजार कर रही हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। कुछ ही देर में ताम के पास काइतो का फोन आता है।
1: तो आइए सुनते हैं 21वें पाठ की बातचीत।
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん。

0: 遅くなって。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
2: पहले काइतो फोन पर बोलता है।
0: もしもし、タムさん。
1: हेलो, ताम।
0: 今どこにいるの？
1: अभी कहाँ हो?
2: ताम जवाब देती है।
3: 時計台の中にいます。
2: घंटा घर के अंदर हूँ।
1: ये सुनकर काइतो पूछता है।
0: え、中？
1: अरे, अंदर।
2: उसके बाद वो कहता है।
0: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
1: तो फिर मैं भी जल्दी से उधर आता हूँ।
2: ताम उत्तर देती है।
3: わかりました।
2: समझ गई।
1: थोड़ी देर में काइतो भी घंटा घर के अंदर पहुँच जाता है। मिया उसे देख लेती है और आवाज लगाती है।
4: काइतो।
2: अरे काइतो।
4: こっちこっち।
2: इधर इधर।
1: काइतो जल्दी से उनके पास पहुँच जाता है और कहता है।
0: ごめん、遅くなって।
1: माफ करना, देर हो गई।
2: अच्छा हुआ उनकी मुलाकात हो गई। सापोरो का घंटा घर एक पुरानी सफेद दो मंजिला लकड़ी की इमारत है। उसकी लाल छत पर घड़ी लगी हुई है।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
1: यानी घंटा घर के अंदर हूँ। ये वाक्य याद करके आप बता सकेंगे कि आप कहाँ हैं।
2: इस वाक्य में
5: टोकेदाई
2: का अर्थ है घंटा घर और
5: नाका
2: का मतलब है अंदर। तो
5: टोकेदाई नो नाका
2: का अर्थ है घंटा घर के अंदर।
1: उसके बाद आया है कारक
5: नी,
1: जिसे स्थान बताने वाली संज्ञा के बाद लगाया जाता है और वाक्य के अंत में लगा है
5: इमास,
1: जो क्रिया
5: इरु
1: यानी होना का मास रूप है।
2: आज की बातचीत में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी की उपस्थिति या उसके होने का स्थान बताने के लिए
5: इमास
2: का उपयोग होता है।
1: पिछले पाठों में हमने क्रिया
5: अरिमास
1: के बारे में भी सीखा था। उसका अर्थ भी था होना, लेकिन इन दोनों के मतलब में अंतर है।
5: इमास
2: का उपयोग इंसानों और जीव जंतुओं के लिए होता है और बाकी सब चीजों के लिए
5: अरिमास
2: का इस्तेमाल करते हैं।
1: तो अगर किसी को ये बताना हो कि आप कहाँ हैं, तो उस जगह का नाम बोलें और उसके बाद लगाएं कारक नी और अंत में लगाएं
5: इमास।
2: सटीक जानकारी देने के लिए आप आसपास की किसी जानी पहचानी जगह के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे आज के मुख्य वाक्य में ताम ने कहा
5: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
2: यानी घंटा घर के अंदर हूँ।
1: ऐसे वाक्य में पहले उस जगह का नाम बोलें, उसके बाद कारक नो जोड़ें, उसके बाद उसके संदर्भ में अपना स्थान बताएं और अंत में लगाएं नी इमास।
2: आज के मुख्य वाक्य में जानी पहचानी जगह है तोकेदाई यानी घंटा घर और ताम उसके अंदर है। अंदर के लिए जापानी शब्द है नाका।
1: तो वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: तोकेदाई नो नाका नी इमास। टोकेदाई नो नाका नी इमास।
2: अब आपको टेलीफोन पर हो रही एक छोटी सी बातचीत सुनाते हैं, जिसमें एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है।
6: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माए नी इमास।
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
2: पहले एक आदमी ने कहा
6: इमा दोको नी इमास का,
1: अभी कहाँ है।
2: यहाँ
5: इमा
2: का अर्थ है अभी और
5: दोको नी इमास
2: का मतलब है कहाँ है।
1: दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया
6: काइसात्स नो माए नी इमास,
1: टिकट गेट के सामने हूँ।
5: काइसात्स
2: का अर्थ है टिकट गेट और
5: माए
2: का अर्थ है सामने। तो
5: काइसात्स नो माए नी
2: का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने।
1: अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
5: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माए नी इमास। काइसात्स नो माए नी इमास।
2: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कन्वीनियंस स्टोर में हैं। कन्वीनियंस स्टोर को जापानी भाषा में कहते हैं।

0: कोम्बिनी।
1: और ये तो आप जानते ही हैं कि अंदर का जापानी शब्द है,
0: नाका।
1: तो कोशिश कीजिए।
2: कोम्बिनी नो नाका नी इमास। कोम्बिनी नो नाका नी इमास।
3: अब मान लीजिए कि आप सूचना केंद्र के बगल में खड़े हैं। सूचना केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर, और जापानी में इसे छोटा करके बोलते हैं
0: इन्फॉर्मेशन।
3: बगल में का जापानी शब्द है
0: योको।
3: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमास। इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमास।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है, आप भी याद कर लीजिए।
2: वकारिमाश्ता।
0: वकारिमाश्ता
3: का अर्थ है समझ गई। इस शब्द का अर्थ है कि आप बात समझ गए हैं।
1: अब इसे बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
0: वकारिमाश्ता।
3: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
4: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
5: 時計台の中にいます。
4: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
5: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
6: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
1: और अब पेश है अंश हारू जी की सलाह, जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सुविधाजनक कन्वीनियंस स्टोरों के बारे में।
3: जापान में लगभग हर जगह कन्वीनियंस स्टोर हैं और इन्हें ढूंढना बहुत आसान है। इनमें से अधिकतर 24 घंटे खुले रहते हैं।
1: इनमें खाने के डिब्बे, उनिगिरी यानी चावल के गोले, सैंडविच, मिठाइयाँ, टॉफी, चॉकलेट और च्युइंगम जैसी विभिन्न चीजें मिलती हैं।
3: इसके अलावा वहाँ चाय, जूस और अन्य पेय पदार्थ भी मिलते हैं। वहाँ से आप पत्रिकाएं और लेखन सामग्री भी खरीद सकते हैं।
1: कुछ में शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, मोबाइल फोन की बैटरी और अंतर वस्त्र जैसी चीजें भी मिलती हैं।
3: यानी वहाँ लगभग सब कुछ मिल जाता है। वहाँ ATM भी होते हैं जिनसे आप पैसे निकाल सकते हैं, और इंटरनेट से बुक किए हुए टिकट भी ले सकते हैं। इसलिए जापान के कन्वीनियंस स्टोर सचमुच में सुविधाजनक हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में ताम, मिया और काइतो सापोरो के हिमोत्सव में जाएंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 22 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वायला कवानो से सुने समाचार। जापान भीषण गर्मी की चपेट में है। उच्च दाब तंत्र के कारण तापमान लगातार दूसरे दिन भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। मिए प्रीफेक्चर के कुवाना शहर में बुधवार को दोपहर 2:20 पर तापमान बढ़कर 40.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। शिजुओका प्रीफेक्चर के हामामात्सु शहर में दोपहर 1:50 पर 40.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और गिफू प्रीफेक्चर के ताजिमी शहर में दोपहर 2:20 पर 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कई अन्य शहरों में भी तापमान 39 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया कि सोमवार को कांतो कोशिन और तोकाई क्षेत्रों में बारिश का मौसम समाप्त हो गया है। टोक्यो के दमकल विभाग का कहना है कि मंगलवार को तापघात के संदेह में 287 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। मौसम विज्ञान एजेंसी ने 41 प्रीफेक्चरों में तापघात की चेतावनी जारी की है। लोगों को तापघात से बचने के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग करने और पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही लोगों से लंबे समय तक बाहरी गतिविधियों से बचने का आग्रह किया जा रहा है। एक सुरक्षा कंपनी के अनुसार 13 जुलाई को जापान की प्रमुख फ्रोजन फूड कंपनी निचेरई पर हुए साइबर हमले की जिम्मेदारी रैंसम हाउस नामक हैकर गुट ने ली है। साइबर हमले के कारण 13 जुलाई से कंपनी का सिस्टम ठप पड़ गया, जिससे कोल्ड स्टोरेज संचालन और फ्रोजन फूड की आपूर्ति बाधित हो गई। सुरक्षा कंपनी SNJ ने कहा कि रैंसम हाउस हैकर गुट ने मंगलवार को एक डार्क वेबसाइट पर बयान पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया है कि उसने निचले कंपनी का कुछ आंतरिक डाटा चुरा लिया है। यह गुट रैंसमवेयर हमलों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। पिछले साल अक्टूबर में इसने कथित तौर पर जापानी ऑनलाइन रिटेलर असुकुरु पर साइबर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिससे कंपनी के सिस्टम में व्यवधान पैदा हो गया था। जापान में कई कंपनियां रैंसमवेयर हमलों का शिकार हो चुकी हैं और इन हमलों के दौरान हैकर्स फिरौती मांगने से पहले कंप्यूटर और सर्वर डाटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कीव में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बाद सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सिरस्की को बर्खास्त कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मिखाइलो द्राप्ती सिरस्की की जगह लेंगे। ये विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए जब ज़ेलेंस्की ने इस महीने की शुरुआत में रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को प्रभावी रूप से बर्खास्त कर दिया था। फेदोरोव ने सैन्य सुधारों को बढ़ावा दिया था और जनता का समर्थन हासिल किया था। खबरों के अनुसार उनके सिरस्की से मतभेद थे, जो कुछ सुधारों का विरोध कर रहे थे। फेदोरोव को पद से हटाए जाने के खिलाफ जनता का आक्रोश जारी रहा। प्रदर्शनकारी उनकी बहाली और सिरस्की को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के धुर दक्षिणी द्वीप के पास स्थित उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड में एक चीनी नौसैनिक पोत द्वारा किए गए गोलीबारी अभ्यास को लेकर जापान की चिंताओं को चीन ने खारिज कर दिया है। जापान सरकार ने पुष्टि की है कि रविवार को प्रशांत महासागर में ओकिनोतोरी शिमा द्वीप से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जापान के ईईजेड के भीतर चीन के मिसाइल विध्वंसक पोत ने मशीन गन से प्रशिक्षण किया। जापान ने राजनयिक माध्यमों से चीन को अपनी चिंताओं से अवगत कराया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में जापान की आपत्तियों को निराधार बताया। ओकिनोतोरी शिमा का उल्लेख करते हुए उन्होंने चीन के पूर्व तर्क को दोहराया कि ये एक चट्टान है, द्वीप नहीं, और इसलिए इसे ईईजेड या महाद्वीपीय शेल्फ का अधिकार नहीं है। प्रवक्ता ने तर्क दिया कि खुले समुद्र में चीन की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जापान अन्य देशों के वैध और कानूनी अभियानों को बदनाम कर रहा है और बाहरी खतरे का डर पैदा कर रहा है। उन्होंने जापान पर अपने सैन्यीकरण को तेज करने और युद्ध पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देने का बहाना खोजने का आरोप लगाया। जापान सरकार का कहना है कि वो इस क्षेत्र में अपनी निगरानी और सर्वेक्षण अभियान जारी रखेगी। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। सितंबर में लागू हो जाने के बाद ये यूरोप में इस तरह का पहला उपाय होगा। फ्रांस की संसद के दोनों सदनों सीनेट और नेशनल असेंबली ने मंगलवार को इस विधेयक को मंजूरी दी। सितंबर में नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के साथ ही 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मौजूदा अकाउंट बंद करने के लिए जनवरी तक 4 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म्स को फ्रांसीसी गोपनीयता नियामक द्वारा अनुमोदित आयु सत्यापन का भी उपयोग करना होगा। उम्र के आधार पर प्रतिबंध लगाने के कदम बच्चों पर सोशल मीडिया के संभावित नकारात्मक प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंता दर्शाते हैं। ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। यूरोपीय संघ भी नियमों पर विचार कर रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा है कि गर्मियों के बाद इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। जापान की प्राचीन राजधानी नारा में पर्यटक एक संगीत वाद्य फ्रेंच हॉर्न बजाकर वन्य हिरणों को बुलाने का आयोजन देखकर आनंदित हो गए हैं। एक सदी पुराने इस कार्यक्रम को शिकायोसे कहा जाता है और ये वसंत, ग्रीष्म और शीत ऋतु में सीमित समय के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम 19 जुलाई से शुरू हुआ। हिरण संरक्षण समूह के एक सदस्य ने वाद्य पर जब बिथोवेन की पास्टोरल सिम्फनी बजाई तो खासुगा ताइशा श्राइन के परिसर में एक खुले मैदान में लगभग 100 हिरण दौड़कर आ गए। समूह के सदस्यों ने हिरणों को बलूत के फल खिलाए और हिरण उन्हें खाने की होड़ में जुट गए। गर्मी के मौसम में हिरणों को पुकारने का कार्यक्रम 6 सितंबर को छोड़कर 27 सितंबर तक हर रविवार को आयोजित किया जाएगा।
2: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान भीषण गर्मी की चपेट में है। उच्च दाब तंत्र के कारण तापमान लगातार दूसरे दिन भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। एक सुरक्षा कंपनी के अनुसार 13 जुलाई को जापान की प्रमुख फ्रोजन फूड कंपनी निचिरे पर हुए साइबर हमले की जिम्मेदारी रैंसम हाउस नामक हैकर गुट ने ली है। और फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया। और इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 21वें पाठ में आप कहाँ हैं ये बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मियां के साथ होक्काइदो घूमने आई है। आज दोनों काइतो से लोकप्रिय पर्यटन स्थल सापोरो घंटा घर में मिलने वाली हैं।
0: दोनों घंटा घर के अंदर काइतो का इंतजार कर रही हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। कुछ ही देर में ताम के पास काइतो का फोन आता है।
1: तो आइए सुनते हैं 21वें पाठ की बातचीत।
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: पहले काइतो फोन पर बोलता है,
4: मुशमुशी ताम-सान।
0: हेलो ताम,
4: इमा दोको नी इरु नो?
0: अभी कहाँ हो?
1: ताम जवाब देती है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ये सुनकर काइतो पूछता है,
4: ए नाका?
0: अरे अंदर।
1: उसके बाद वो कहता है,
4: जा बुक मो सुगु सोच्ची नी इकुने।
0: तो फिर मैं भी जल्दी से उधर आता हूँ।
1: ताम उत्तर देती है,
3: वकरिमास्ता।
1: समझ गई।
0: थोड़ी देर में काइतो भी घंटा घर के अंदर पहुंच जाता है। मिया उसे देख लेती है और आवाज लगाती है,
3: आ, काइतो।
1: अरे काइतो,
3: कोच्ची कोच्ची,
1: इधर इधर।
0: काइतो जल्दी से उनके पास पहुंच जाता है और कहता है,
4: गोमें ओसोकु नत्ते,
0: माफ करना देर हो गई।
1: अच्छा हुआ उनकी मुलाकात हो गई। सापोरो का घंटा घर एक पुरानी सफेद दो मंजिला लकड़ी की इमारत है। उसकी लाल छत पर घड़ी लगी हुई है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
0: यानी घंटा घर के अंदर हूँ। ये वाक्य याद करके आप बता सकेंगे कि आप कहाँ हैं।
1: इस वाक्य में
5: टोकेदाई
1: का अर्थ है घंटा घर और
5: नाका
1: का मतलब है अंदर। तो
5: टोकेदाई नो नाका
1: का अर्थ है घंटा घर के अंदर।
0: उसके बाद आया है कारक
5: नी,
0: जिसे स्थान बताने वाली संज्ञा के बाद लगाया जाता है और वाक्य के अंत में लगा है
5: इमास,
0: जो क्रिया
5: इरु
0: यानी होना का मास रूप है।
1: आज की बातचीत में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी की उपस्थिति या उसके होने का स्थान बताने के लिए
5: इमास
1: का उपयोग होता है।
0: पिछले पाठों में हमने क्रिया
5: अरिमास
0: के बारे में भी सीखा था। उसका अर्थ भी था होना, लेकिन इन दोनों के मतलब में अंतर है।
5: इमास
1: का उपयोग इंसानों और जीव जंतुओं के लिए होता है और बाकी सब चीजों के लिए
5: अरिमास
1: का इस्तेमाल करते हैं।
0: तो अगर किसी को ये बताना हो कि आप कहाँ हैं, तो उस जगह का नाम बोलें और उसके बाद लगाएं कारक नी और अंत में लगाएं
5: इमास।
1: सटीक जानकारी देने के लिए आप आसपास की किसी जानी पहचानी जगह के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे आज के मुख्य वाक्य में ताम ने कहा,
5: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
1: यानी घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ऐसे वाक्य में पहले उस जगह का नाम बोलें, उसके बाद कारक नो जोड़ें, उसके बाद उसके संदर्भ में अपना स्थान बताएं और अंत में लगाएं नी इमास।
1: आज के मुख्य वाक्य में जानी पहचानी जगह है तोकेदाई यानी घंटाघर और ताम उसके अंदर है। अंदर के लिए जापानी शब्द है नाका।
0: तो वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: तोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: टोकेदाई नो नाका नी इमास। अब आपको टेलीफोन पर हो रही एक छोटी सी बातचीत सुनाते हैं, जिसमें एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है।
6: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माई नी इमास।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने कहा,
6: इमा दोको नी इमास का?
0: अभी कहाँ है?
1: यहाँ
5: इमा
1: का अर्थ है अभी और
5: दोको नी इमास
1: का मतलब है कहाँ है।
0: दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया,
6: काइसात्स नो माई नी इमास,
0: टिकट गेट के सामने हूँ।
5: काइसात्स
1: का अर्थ है टिकट गेट और
5: माए
1: का अर्थ है सामने, तो
5: काइसात्स नो माए नी
1: का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने।
0: अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
5: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माए नी इमास। काइसात्स नो माए नी इमास।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कन्वीनियंस स्टोर में हैं। कन्वीनियंस स्टोर को जापानी भाषा में कहते हैं
5: कोम्बिनी,
1: और ये तो आप जानते ही हैं कि अंदर का जापानी शब्द है
5: नाका।
1: तो कोशिश कीजिए,
3: कोम्बिनी नो नाका नी इमास। कोम्बिनी नो नाका नी इमास।
0: अब मान लीजिए कि आप सूचना केंद्र के बगल में खड़े हैं। सूचना केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर, और जापानी में इसे छोटा करके बोलते हैं
5: इन्फॉर्मेशन।
0: बगल में का जापानी शब्द है
5: योको।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमास। इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमास।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है, आप भी याद कर लीजिए।
3: वकारिमाश्ता।
5: वकारिमाश्ता
0: का अर्थ है समझ गई। इस शब्द का अर्थ है कि आप बात समझ गए हैं।
1: अब इसे बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: वकारिमाश्ता।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
1: और अब पेश है अंश हारू जी की सलाह, जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सुविधाजनक कन्वीनियंस स्टोरों के बारे में।
0: जापान में लगभग हर जगह कन्वीनियंस स्टोर हैं और इन्हें ढूंढना बहुत आसान है। इनमें से अधिकतर 24 घंटे खुले रहते हैं।
1: इनमें खाने के डिब्बे, उनिगिरी यानी चावल के गोले, सैंडविच, मिठाइयाँ, टॉफी, चॉकलेट और च्युइंगम जैसी विभिन्न चीजें मिलती हैं।
0: इसके अलावा वहाँ चाय, जूस और अन्य पेय पदार्थ भी मिलते हैं। वहाँ से आप पत्रिकाएं और लेखन सामग्री भी खरीद सकते हैं।
1: कुछ में शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, मोबाइल फोन की बैटरी और अंतर वस्त्र जैसी चीजें भी मिलती हैं।
0: यानी वहाँ लगभग सब कुछ मिल जाता है। वहाँ ATM भी होते हैं जिनसे आप पैसे निकाल सकते हैं, और इंटरनेट से बुक किए हुए टिकट भी ले सकते हैं। इसलिए जापान के कन्वीनियंस स्टोर सचमुच में सुविधाजनक हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम, मिया और काइतो सापोरो के हिमोत्सव में जाएंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें। चीन ने जापान के खसूसी इक्तसादी जोन में उसके सबसे जनूबी जजीरे के करीब चीनी बहरिया के एक जहाज के लाइव फायर मश्क करने पर जापान के खदशात को मुस्तरद कर दिया है। जापानी हुकूमत ने तस्दीक की है कि इतवार के रोज एक चीनी मेजाइल डिस्ट्रॉयर ने बहरुल काहिल में ओकिनोतोरी शीमा जजीरे से 180 किलोमीटर जनूब मगरब में जापान के खसूसी इक्तसादी जोन के अंदर मशीन गन चलाने की मश्क की। टोक्यो ने अपने खदशात को सफारती जराए से बीजिंग तक पहुंचाया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मंगल को मामूल की न्यूज कॉन्फ्रेंस में जापान के एतराजात को बेबुनियाद करार दिया। ओकिनोतोरी शीमा का हवाला देते हुए उन्होंने चीन के साबिका मौकफ को दोहराया कि यह एक चट्टान है ना कि जजीरा, और यह खसूसी इक्तसादी जोन जबर आजमी शेल्फ रखने का हकदार नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि खुले समंदरों में बीजिंग की सरगर्मियां बैन अल्कवामी कवानीन के मुताबिक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जापान दूसरे ममालिक की जायज और कानूनी कार्रवाइयों को बदनाम कर रहा है और बैरूनी खतरे के खौफ को हवा दे रहा है। उन्होंने जापान पर इल्जाम लगाया कि वो अपने दोबारा मुसल्ला होने के अमल को तेज और जंग के बाद के बैन अल्कवामी नज्म को चैलेंज करने का बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जापानी हुकूमत का कहना है कि वो इलाके में निगरानी और कड़ी नजर रखने की अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। फ्रांसीसी पार्लियामेंट ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के हक में वोट दिया है। सितंबर में नाफिज होने के बाद ये यूरोप में ऐसी पहली पाबंदी होगी। फ्रांसीसी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों सेनेट और कौमी असेंबली ने मंगल को इस कानून की मंजूरी दी। इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर नए तालीमी साल के आगाज यानी सितंबर से सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर पाबंदी लग जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मौजूदा अकाउंट्स बंद करने के लिए जनवरी तक मजीद 4 माह की मोहलत दी जाएगी। इन प्लेटफॉर्म्स के लिए जरूरी होगा कि वह उम्र की तस्दीक के लिए फ्रांस के प्राइवेसी रेगुलेटर का मंजूर करदा डाटा इस्तेमाल करें। उम्र की बुनियाद पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पाबंदियां मुतारिफ करवाने के इकदाम बच्चों पर इन प्लेटफॉर्म्स के मुमकिन मनफी असरात के हवाले से बढ़ते हुए खदशात के अक्कास हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद की। यूरोपीय यूनियन भी कवायद पर गौर कर रही है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेन का कहना है कि मौसम गर्मा के बाद एक खास मंसूबा तजवीज किया जाएगा। जापान के कदीम दल हुकूमत नारा में सियाहों ने फ्रांसीसी हॉर्न यानी बाजे पर बजाई जाने वाली मौसीकी से जंगली हिरनों को एक साथ बुलाने के अमल का लुत्फ उठाया है। 100 साल से पुरानी तारीख के हामिल इस इवेंट को शिकायो से कहा जाता है। इसका इनेकाद हर साल बहार, मौसम गर्मा और सर्दियों में महदूद वक्त के लिए किया जाता है। इस साल मौसम गर्मा में हिरनों को बुलाने का अमल 19 जुलाई को शुरू हुआ। हिरनों के तहफ्फुज़ के एक ग्रुप के रुकन की जानिब से बाजे पर बेथोवेन की पास्टरल सिम्फनी बजाए जाने पर तकरीबन 100 हिरन लोगों की नजरों के सामने भागते हुए कासुगा ताइशा श्राइन के मैदान में निकल आए।

0: हिरन शाबलूत खाने के लिए धक्कम पेल करते रहे जो ग्रुप के मेंबरान उन्हें खिला रहे थे। इस मौसम गर्मा में हिरनों को बुलाने का इवेंट 6 सितंबर के अलावा 27 सितंबर तक हर इतवार को मुनाकिद होगा।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जापान बदस्तूर गर्मी की एक शदीद लहर की लपेट में है। हवा के ज़्यादा दबाव के एक मुअल्लिक निज़ाम के बायस दर्जे हरारत मुसलसल दूसरे दिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है। और एक सिक्योरिटी फर्म का कहना है कि एक हैकर ग्रुप ने इस माह के शुरू में जापान की बड़ी मुंजमित फूड कंपनी निचिरेई पर होने वाले साइबर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कीव में कई दिनों से जारी अवामी मुजाहरों के बाद फौज के कमांडर इन चीफ ओलेक्सेंडर सिरिस्की को बरतरफ कर दिया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: कन्वीनियंस स्टोर्स जापान के हर इलाके में पाए जाते हैं और इन्हें ढूंढना भी काफ़ी आसान होता है। ज़्यादातर कन्वीनियंस स्टोर साल भर 24 घंटे खुले होते हैं। इनमें तैयार खाने, सैंडविच, मिठाइयों और मशरूबात से लेकर स्टेशनरी और मैगजीन तक, यानी रोज़मर्रा इस्तेमाल की वसी अकसाम की चीज़ें दस्तियाब होती हैं। बाद में तो शैम्पू, साबुन, कपड़े धोने का पाउडर, मोबाइल फ़ोन की बैटरियाँ और जेर जामे और मोज़े तक दस्तियाब होते हैं।
1: यानी इनमें रोज़मर्रा ज़िंदगी की तमाम ही चीज़ें दस्तियाब होती हैं।
0: जी हाँ, तकरीबन तमाम ही चीज़ें। इनमें न सिर्फ ATM से रकम भी निकलवाई जा सकती है और यहाँ से इंटरनेट के ज़रिए खरीदे गए टिकट वगैरह भी वसूल किए जा सकते हैं। ये वाकई कन्वीनियंस यानी सहूलत के हामिल स्टोर्स हैं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 22 जुलाई बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला जैन और वायला कवानो से सुने समाचार। जापान भीषण गर्मी की चपेट में है। उच्च दाब तंत्र के कारण तापमान लगातार दूसरे दिन भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। मिए प्रीफेक्चर के कुवाना शहर में बुधवार को दोपहर 2:20 पर तापमान बढ़कर 40.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। शिजुओका प्रीफेक्चर के हामामात्सु शहर में दोपहर 1:50 पर 40.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया और गिफू प्रीफेक्चर के ताजिमी शहर में दोपहर 2:20 पर 40 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कई अन्य शहरों में भी तापमान 39 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया कि सोमवार को कांतो कोशिन और तोकाई क्षेत्रों में बारिश का मौसम समाप्त हो गया है। टोक्यो के दमकल विभाग का कहना है कि मंगलवार को तापघात के संदेह में 287 लोगों को अस्पताल ले जाया गया। मौसम विज्ञान एजेंसी ने 41 प्रीफेक्चरों में तापघात की चेतावनी जारी की है। लोगों को तापघात से बचने के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग करने और पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करने की सलाह दी जा रही है। साथ ही लोगों से लंबे समय तक बाहरी गतिविधियों से बचने का आग्रह किया जा रहा है। एक सुरक्षा कंपनी के अनुसार 13 जुलाई को जापान की प्रमुख फ्रोजन फूड कंपनी निचेरई पर हुए साइबर हमले की जिम्मेदारी रैंसम हाउस नामक हैकर गुट ने ली है। साइबर हमले के कारण 13 जुलाई से कंपनी का सिस्टम ठप पड़ गया, जिससे कोल्ड स्टोरेज संचालन और फ्रोजन फूड की आपूर्ति बाधित हो गई। सुरक्षा कंपनी SNJ ने कहा कि रैंसम हाउस हैकर गुट ने मंगलवार को एक डार्क वेबसाइट पर बयान पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया है कि उसने निचेरई कंपनी का कुछ आंतरिक डाटा चुरा लिया है। यह गुट रैंसमवेयर हमलों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। पिछले साल अक्टूबर में इसने कथित तौर पर जापानी ऑनलाइन रिटेलर असुकुरु पर साइबर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिससे कंपनी के सिस्टम में व्यवधान पैदा हो गया था। जापान में कई कंपनियां रैंसमवेयर हमलों का शिकार हो चुकी हैं और इन हमलों के दौरान हैकर्स फिरौती मांगने से पहले कंप्यूटर और सर्वर डाटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कीव में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शनों के बाद सेना प्रमुख अलेक्जेंडर सिरस्की को बर्खास्त कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मिखाइलो द्राप्ती सिरस्की की जगह लेंगे। ये विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए जब ज़ेलेंस्की ने इस महीने की शुरुआत में रक्षा मंत्री मिखाइलो फेदोरोव को प्रभावी रूप से बर्खास्त कर दिया था। फेदोरोव ने सैन्य सुधारों को बढ़ावा दिया था और जनता का समर्थन हासिल किया था। खबरों के अनुसार उनके सिरस्की से मतभेद थे, जो कुछ सुधारों का विरोध कर रहे थे। फेदोरोव को पद से हटाए जाने के खिलाफ जनता का आक्रोश जारी रहा। प्रदर्शनकारी उनकी बहाली और सिरस्की को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के धुर दक्षिणी द्वीप के पास स्थित उसके अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड में एक चीनी नौसैनिक पोत द्वारा किए गए गोलीबारी अभ्यास को लेकर जापान की चिंताओं को चीन ने खारिज कर दिया है। जापान सरकार ने पुष्टि की है कि रविवार को प्रशांत महासागर में ओकिनोतोरी शिमा द्वीप से लगभग 180 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जापान के ईईजेड के भीतर चीन के मिसाइल विध्वंसक पोत ने मशीन गन से प्रशिक्षण किया। जापान ने राजनयिक माध्यमों से चीन को अपनी चिंताओं से अवगत कराया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में जापान की आपत्तियों को निराधार बताया। ओकिनोतोरी शिमा का उल्लेख करते हुए उन्होंने चीन के पूर्व तर्क को दोहराया कि ये एक चट्टान है, द्वीप नहीं, और इसलिए इसे ईईजेड या महाद्वीपीय शेल्फ का अधिकार नहीं है। प्रवक्ता ने तर्क दिया कि खुले समुद्र में चीन की गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जापान अन्य देशों के वैध और कानूनी अभियानों को बदनाम कर रहा है और बाहरी खतरे का डर पैदा कर रहा है। उन्होंने जापान पर अपने सैन्यीकरण को तेज करने और युद्ध पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौती देने का बहाना खोजने का आरोप लगाया। जापान सरकार का कहना है कि वो इस क्षेत्र में अपनी निगरानी और सर्वेक्षण अभियान जारी रखेगी। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया है। सितंबर में लागू हो जाने के बाद ये यूरोप में इस तरह का पहला उपाय होगा। फ्रांस की संसद के दोनों सदनों, सीनेट और नेशनल असेंबली ने मंगलवार को इस विधेयक को मंजूरी दी। सितंबर में नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत के साथ ही 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा सोशल मीडिया अकाउंट बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मौजूदा अकाउंट बंद करने के लिए जनवरी तक 4 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्लेटफॉर्म्स को फ्रांसीसी गोपनीयता नियामक द्वारा अनुमोदित आयु सत्यापन का भी उपयोग करना होगा। उम्र के आधार पर प्रतिबंध लगाने के कदम बच्चों पर सोशल मीडिया के संभावित नकारात्मक प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंता दर्शाते हैं। ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। यूरोपीय संघ भी नियमों पर विचार कर रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा है कि गर्मियों के बाद इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। जापान की प्राचीन राजधानी नारा में पर्यटक एक संगीत वाद्य फ्रेंच हॉर्न बजाकर वन्य हिरणों को बुलाने का आयोजन देखकर आनंदित हो गए हैं। एक सदी पुराने इस कार्यक्रम को शिकायोसे कहा जाता है और ये वसंत, ग्रीष्म और शीत ऋतु में सीमित समय के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम 19 जुलाई से शुरू हुआ। हिरण संरक्षण समूह के एक सदस्य ने वाद्य पर जब बेथोवेन की पास्टोरल सिम्फनी बजाई तो खासुगा ताइशा श्राइन के परिसर में एक खुले मैदान में लगभग 100 हिरण दौड़कर आ गए। समूह के सदस्यों ने हिरणों को बलूत के फल खिलाए और हिरण उन्हें खाने की होड़ में जुट गए। गर्मी के मौसम में हिरणों को पुकारने का कार्यक्रम 6 सितंबर को छोड़कर 27 सितंबर तक हर रविवार को आयोजित किया जाएगा।
2: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान भीषण गर्मी की चपेट में है। उच्च दाब तंत्र के कारण तापमान लगातार दूसरे दिन भी 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। एक सुरक्षा कंपनी के अनुसार 13 जुलाई को जापान की प्रमुख फ्रोजन फूड कंपनी निचिरे पर हुए साइबर हमले की जिम्मेदारी रैंसम हाउस नामक हैकर गुट ने ली है। और फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 21वें पाठ में आप कहाँ हैं ये बताना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइडो घूमने आई है। आज दोनों काइतो से लोकप्रिय पर्यटन स्थल सापोरो घंटा घर में मिलने वाली हैं।
0: दोनों घंटा घर के अंदर काइतो का इंतजार कर रही हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। कुछ ही देर में ताम के पास काइतो का फोन आता है।
1: तो आइए सुनते हैं 21वें पाठ की बातचीत।
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
1: पहले काइतो फोन पर बोलता है,
4: मोशी ताम-सान।
0: हेलो ताम,
4: इमा दोको नी इरुनो?
0: अभी कहाँ हो?
1: ताम जवाब देती है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ये सुनकर काइतो पूछता है,
4: ए नाका?
0: अरे अंदर।
1: उसके बाद वो कहता है,
4: जा बुक मो सुगु सोच्ची नी इकुने।
0: तो फिर मैं भी जल्दी से उधर आता हूँ।
1: ताम उत्तर देती है,
3: वकरिमास्ता।
1: समझ गई।
0: थोड़ी देर में काइतो भी घंटा घर के अंदर पहुंच जाता है। मिया उसे देख लेती है और आवाज लगाती है,
3: आ, काइतो।
1: अरे काइतो,
3: कोच्ची कोच्ची,
1: इधर इधर।
0: काइतो जल्दी से उनके पास पहुंच जाता है और कहता है,
4: गोमें ओसोकु नत्ते,
0: माफ करना देर हो गई।
1: अच्छा हुआ उनकी मुलाकात हो गई। सापोरो का घंटा घर एक पुरानी सफेद दो मंजिला लकड़ी की इमारत है। उसकी लाल छत पर घड़ी लगी हुई है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
3: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
0: यानी घंटा घर के अंदर हूँ। ये वाक्य याद करके आप बता सकेंगे कि आप कहाँ हैं।
1: इस वाक्य में
5: टोकेदाई
1: का अर्थ है घंटा घर और
5: नाका
1: का मतलब है अंदर। तो
5: टोकेदाई नो नाका
1: का अर्थ है घंटा घर के अंदर।
0: उसके बाद आया है कारक
5: नी,
0: जिसे स्थान बताने वाली संज्ञा के बाद लगाया जाता है और वाक्य के अंत में लगा है
5: इमास,
0: जो क्रिया
5: इरु
0: यानी होना का मास रूप है।
1: आज की बातचीत में ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी की उपस्थिति या उसके होने का स्थान बताने के लिए
5: इमास
1: का उपयोग होता है।
0: पिछले पाठों में हमने क्रिया
5: अरिमास
0: के बारे में भी सीखा था। उसका अर्थ भी था होना, लेकिन इन दोनों के मतलब में अंतर है।
5: इमास
1: का उपयोग इंसानों और जीव जंतुओं के लिए होता है और बाकी सब चीजों के लिए
5: अरिमास
1: का इस्तेमाल करते हैं।
0: तो अगर किसी को ये बताना हो कि आप कहाँ हैं, तो उस जगह का नाम बोलें और उसके बाद लगाएं कारक नी और अंत में लगाएं
5: इमास।
1: सटीक जानकारी देने के लिए आप आसपास की किसी जानी पहचानी जगह के बारे में भी बता सकते हैं। जैसे आज के मुख्य वाक्य में ताम ने कहा,
5: टोकेदाई नो नाका नी इमास,
1: यानी घंटा घर के अंदर हूँ।
0: ऐसे वाक्य में पहले उस जगह का नाम बोलें, उसके बाद कारक नो जोड़ें, उसके बाद उसके संदर्भ में अपना स्थान बताएं और अंत में लगाएं नी इमास।
1: आज के मुख्य वाक्य में जानी पहचानी जगह है तोकेदाई यानी घंटा घर और ताम उसके अंदर है। अंदर के लिए जापानी शब्द है नाका।
0: तो वाक्य सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: तोकेदाई नो नाका नी इमास।
1: अब आपको टेलीफोन पर हो रही एक छोटी सी बातचीत सुनाते हैं, जिसमें एक आदमी प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है।
6: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माई नी इमास।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने कहा,
6: इमा दोको नी इमास का?
0: अभी कहाँ है?
1: यहाँ
5: इमा
1: का अर्थ है अभी और
5: दोको नी इमास
1: का मतलब है कहाँ है।
0: दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया,
6: काइसात्स नो माई नी इमास,
0: टिकट गेट के सामने हूँ।
5: काइसात्स
1: का अर्थ है टिकट गेट और
5: माए
1: का अर्थ है सामने, तो
5: काइसात्स नो माए नी
1: का मतलब हुआ टिकट गेट के सामने।
0: अब प्रश्न और उत्तर दोनों सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कीजिए।
5: इमा दोको नी इमास का? काइसात्स नो माए नी इमास। काइसात्स नो माए नी इमास।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप कन्वीनियंस स्टोर में हैं। कन्वीनियंस स्टोर को जापानी भाषा में कहते हैं
5: कोम्बिनी,
1: और ये तो आप जानते ही हैं कि अंदर का जापानी शब्द है
5: नाका।
1: तो कोशिश कीजिए,
3: कोम्बिनी नो नाका नी इमास। कोम्बिनी नो नाका नी इमास।
0: अब मान लीजिए कि आप सूचना केंद्र के बगल में खड़े हैं। सूचना केंद्र को अंग्रेजी में कहते हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर, और जापानी में इसे छोटा करके बोलते हैं
5: इन्फॉर्मेशन।
0: बगल में का जापानी शब्द है
5: योको।
0: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमास। इन्फॉर्मेशन नो योको नी इमास।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है, आप भी याद कर लीजिए।
3: वकारिमाश्ता।
5: वकारिमाश्ता
0: का अर्थ है समझ गई। इस शब्द का अर्थ है कि आप बात समझ गए हैं।
1: अब इसे बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
5: वकारिमाश्ता।
0: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
3: 時計台の中にいます。
2: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
7: ハルさんの知恵袋。
1: और अब पेश है अंश हारू जी की सलाह, जिसमें आज हम बता रहे हैं जापान के सुविधाजनक कन्वीनियंस स्टोरों के बारे में।
0: जापान में लगभग हर जगह कन्वीनियंस स्टोर हैं और इन्हें ढूंढना बहुत आसान है। इनमें से अधिकतर 24 घंटे खुले रहते हैं।
1: इनमें खाने के डिब्बे, उनिगिरी यानी चावल के गोले, सैंडविच, मिठाइयाँ, टॉफी, चॉकलेट और च्युइंगम जैसी विभिन्न चीजें मिलती हैं।
0: इसके अलावा वहाँ चाय, जूस और अन्य पेय पदार्थ भी मिलते हैं। वहाँ से आप पत्रिकाएं और लेखन सामग्री भी खरीद सकते हैं।
1: कुछ में शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, मोबाइल फोन की बैटरी और अंतर वस्त्र जैसी चीजें भी मिलती हैं।
0: यानी वहाँ लगभग सब कुछ मिल जाता है। वहाँ ATM भी होते हैं जिनसे आप पैसे निकाल सकते हैं, और इंटरनेट से बुक किए हुए टिकट भी ले सकते हैं। इसलिए जापान के कन्वीनियंस स्टोर सचमुच में सुविधाजनक हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम, मिया और काइतो सापोरो के हिमोत्सव में जाएंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

0: एक जहाज के लाइव फायर मश्क करने पर जापान के खदशात को मुस्तरद कर दिया है। जापानी हुकूमत ने तस्दीक की है कि इतवार के रोज एक चीनी मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने बहरुल काहिल में ओकिनोतोरी शिमा जजीरे से 180 किलोमीटर जनूब मगरब में जापान के खसूसी इक्तसादी जोन के अंदर मशीन गन चलाने की मश्क की। टोक्यो ने अपने खदशात को सफारती जराए से बीजिंग तक पहुंचाया। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मंगल को मामूल की न्यूज कॉन्फ्रेंस में जापान के एतराजात को बेबुनियाद करार दिया। ओकिनोतोरी शिमा का हवाला देते हुए उन्होंने चीन के साबिका मौकफ को दोहराया कि यह एक चट्टान है ना कि जजीरा, और यह खसूसी इक्तसादी जोन जबरियाजमी शेल्फ रखने का हकदार नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि खुले समंदरों में बीजिंग की सरगर्मियां बैन अल्कवामी कवानीन के मुताबिक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जापान दूसरे ममालिक की जायज और कानूनी कार्रवाइयों को बदनाम कर रहा है और बैरूनी खतरे के खौफ को हवा दे रहा है। उन्होंने जापान पर इल्जाम लगाया कि वो अपने दोबारा मुसल्ला होने के अमल को तेज और जंग के बाद के बैन अल्कवामी नज्म को चैलेंज करने का बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जापानी हुकूमत का कहना है कि वो इलाके में निगरानी और कड़ी नजर रखने की अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। फ्रांसीसी पार्लियामान ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के हक में वोट दिया है। सितंबर में नाफिज होने के बाद ये यूरोप में ऐसी पहली पाबंदी होगी। फ्रांसीसी पार्लियामान के दोनों एवानों सेनेट और कौमी असेंबली ने मंगल को इस कानून की मंजूरी दी। इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर नए तालीमी साल के आगाज यानी सितंबर से सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर पाबंदी लग जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मौजूदा अकाउंट्स बंद करने के लिए जनवरी तक मजीद 4 माह की मोहलत दी जाएगी। इन प्लेटफॉर्म्स के लिए जरूरी होगा कि वो उम्र की तस्दीक के लिए फ्रांस के प्राइवेसी रेगुलेटर का मंजूर करदा डाटा इस्तेमाल करें। उम्र की बुनियाद पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पाबंदियां मुतारिफ करवाने के इकदाम बच्चों पर इन प्लेटफॉर्म्स के मुमकिन मनफी असरात के हवाले से बढ़ते हुए खदशात के अक्कास हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद की। यूरोपीय यूनियन भी कवायद पर गौर कर रही है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेन का कहना है कि मौसम गर्मा के बाद एक खास मंसूबा तजवीज किया जाएगा। जापान के कदीम दल हुकूमत नारा में सियाहों ने फ्रांसीसी हॉर्न यानी बाजे पर बजाई जाने वाली मौसीकी से जंगली हिरनों को एक साथ बुलाने के अमल का लुत्फ उठाया है। 100 साल से पुरानी तारीख के हामिल इस इवेंट को शिकायो से कहा जाता है। इसका इनेकाद हर साल बहार, मौसम गर्मा और सर्दियों में महदूद वक्त के लिए किया जाता है। इस साल मौसम गर्मा में हिरनों को बुलाने का अमल 19 जुलाई को शुरू हुआ। हिरनों के तहफ्फुज के एक ग्रुप के रुकन की जानिब से बाजे पर बेथोवेन की पास्ट्रल सिम्फनी बजाए जाने पर तकरीबन 100 हिरन लोगों की नजरों के सामने भागते हुए कासुगा ताइशा श्राइन के मैदान में निकल आए। हिरन शाबलूत खाने के लिए धक्कम पेल करते रहे जो ग्रुप के मेम्बरान उन्हें खिला रहे थे। इस मौसम गर्मा में हिरनों को बुलाने का इवेंट 6 सितंबर के अलावा 27 सितंबर तक हर इतवार को मुनाकिद होगा।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नज़र। जापान बदस्तूर गर्मी की एक शदीद लहर की लपेट में है। हवा के ज्यादा दबाव के एक मौलक निज़ाम के बायस दर्जे हरारत मुसलसल दूसरे दिन 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है। और एक सिक्योरिटी फर्म का कहना है कि एक हैकर ग्रुप ने इस माह के शुरू में जापान की बड़ी मुंजमित फूड कंपनी निचिरेई पर होने वाले साइबर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। और यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कीव में कई दिनों से जारी अवामी मुजाहरों के बाद फौज के कमांडर इन चीफ ओलेक्सेंडर सिरिस्की को बरतरफ कर दिया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।